0: Bringing you the hits of the past on Radio Jagriti 102.7 FM.
1: तेरा शहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
2: लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: एक ऐसी अभागन बहन जिसके चार भाई रहते हुए अपना रक्षाबंधन त्योहार नहीं मना सकी, उससे आखिर क्या गलती क्या अपराध हो गया था जिसके कारण इसके माता पिता और भाइयों ने रिश्ता ही तोड़ लिया था। इस बहन से फिर भगवान गणेश ने राखी बंधवाई, कैसे और कहां, सुनते हैं पूरी कहानी।

यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मुखं करोति वाचालं पंगोलं गयते गरम यत्कृपातं तमहं वन्दे परमानंद माधवम् ओम कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतर्नाम गतर्भव संसारनवमज्ञानां क्रस्प्रसीद पुरुषोत्तमं भगवान श्री कृष्ण श्री राम सेम रामो राज मनी सना विजयते रामं रमेशं वजे रामेनाभि यतान्सा चर्चम रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर अभिवारी वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् अभिवारी देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजन्वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।

बोले श्री गायत्री माता की कि ब्राह्मण देवर चांद गायत्री मंत्र बट दैट इज आल्सो अ यूनिवर्सल मंत्र आल्सो टू इफ यू चांट इट दैट इज नो प्रॉब्लम यू चांट इट एनी मॉर्निंग टाइम एस्पेशली व्हेन द सन इज प्रिवेलिंग आल्सो